0: महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply। दावत के साथ £2,000 का हॉलिडे या फिर 100 में से एक £50 वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स जीतिए और इसी खुशी में चले आइए दावत के साथ बिग राइस वीकेंड मनाने एट SND सुपरमार्केट सोहो रोड बर्मिंगहम ऑन 27th एंड 28th ऑफ जून फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। सिर्फ इस वीकेंड पाइए अमेजिंग ऑफर्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। कॉम्पिटिशन 6 अगस्त तक चलेगा। winwithdawat.com पर एंटर कीजिए या QR कोड स्कैन कीजिए। यू नीड टू बी 18 और ओवर टू एंटर। One entry per household. T&Cs apply. Visit winwithdawat.com. Aur yaad rakhiye, rice isn't just rice until you've tried Dawat Extra Long Basmati. Arey mujhe help kijiye na, mujhe kai gifts chahiye.
1: To Waseem Jewelers aaye.
0: Aur shaadi ki jewelry bhi chahiye.
1: To Waseem Jewelers aaye.
0: Aur hamare sone ki valuation.
1: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड्डा सोना
1: वसीम ज्वेलर्स।
2: I'm the full package. I've got the looks, the chat, the personality. I'm a total beach babe, always got a tan, always got a good story to tell. Yeah, I've got cheeky sides, but I'm not here to mess about. I'm looking for my perfect match.
3: Okay, how about some cat eye frames?
2: Oh, yeah,
3: with polarized lenses.
2: Oh,
3: or a blue tint.
2: Perfect.
4: At Specsavers, you can mix and match frames, tints and lenses to create your unique pair of sunglasses. And get £40 off reactions, mirror and polarizing lenses. Conditions apply. See in store for details.
5: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
6: स्वाति, जब से लाइफ में आई है, लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
7: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
8: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
9: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
8: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
5: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 and Z5 app.
10: Hi, I'm Sonia Dutta. Don't forget to join me on Drive Time weekdays from 4 PM with Pepe's Piri Piri. You know I like to boggle your mind with all the fun and games, so if you like a challenge, tune in and get involved. See you there.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Jaja. Adios, amigo.
1: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Man and Well Woman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
2: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
3: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
4: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
5: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
6: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
5: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
2: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
1: No, no, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Man and Well Woman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
1: हालात का है यहाँ लेके आए, कैसा ये ससुराल है.
2: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 10 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. वैभवी नीलिंग सेज, शबनम जी व्हाट्सएपिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, लविंग द शो, थैंक यू सो मच. आप कहते हैं कि किंग, रामायण एंड वाराणसी, दीज आर ऑल फिल्म्स दैट फैंस आर डेस्परेट फॉर बिकॉज दे वांट टू वॉच समथिंग रियली एक्साइटिंग ऑन द बिग स्क्रीन. रियली?

मजा आ रहा है। फिल्म बांदर मंकी इन अ केज। ऑलराइट, हैव अ लिसन टू दिस लिटिल स्निपेट। यू नो द सॉन्ग, बट हु इज गोना बी फर्स्ट विद द राइट आंसर? हियर वी गो। That's it. 07925-700-272. Name the song or name the film. Entirely up to you. Siren Johnson, a very good evening to you. How are you? She said, I don't understand why people walk their dogs in a heatwave.

0: Movie The Lion King, what famous Swahili phrase is sung by Timon and Pumbaa to teach Simba a worry-free philosophy of life? What do you think? Answer coming up after nine. It's time for a break and the news.
1: Celebrating 36 years of excellence.
2: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
1: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
3: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208 909 3030 or visit AsianFuneralCare.com.